0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: शहनाज।
0: कहाँ से बात कर रहे?
1: गंगापुर सिटी, संजय कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आशिक तेरा।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:08 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें, अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: वो हो गया। हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: नमस्ते करण जी।
1: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
0: नाम तो चौधरी बोल रहा हूँ। कल तो फार्मेसी प्रोग्राम बंद था।
1: हाँ सर, पेपर था कल एलडीसी का, बंद था कल यहाँ पर प्रोग्राम।
0: संडे की वजह से था?
1: नहीं सर, वो एलडीसी का पेपर था कल, एलडीसी का।
0: हाँ,
1: तो सेंटर आया स्कूल में।
0: समझ गया, एकेडमी ऑफ सेंटर।
1: हाँ जी, इसलिए।
0: और बरसात वगैरह कुछ कैसी?
1: हाँ सर, बरसात हो रही है। अब तो बरसात का मौसम ही है, बरसात ही चल रही है।
0: चलो लिखो गाना।
1: हाँ जी बताइए।
0: देखा तो ये दिल, बेकाबू हो गया, बेकाबू हो गया।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिएगा ना रेडियो डीएसपी कॉल करने के लिए। बहुत बहुत

0: दीदी कैसी हैं आप?
1: सर ठीक है, और आप कैसे हो? बारिश कैसी हो रही है?
0: बारिश तो नहीं है दीदी, गर्मी हो रही है इस समय।
1: अच्छा, यहाँ तो बारिश हो रही है सर।
0: अभी भी बारिश हो रही है आपके यहाँ?
1: सर
0: कोई बात नहीं दीदी, भेज दो इधर भी थोड़ी थोड़ी।
1: अच्छा अब भेजने वाली चीज नहीं है, कोलियर तो हो नहीं सकती बारिश, अब बादल से कहना पड़ेगा कि भाई उधर जाओ जल्दी से।
0: तो कुछ तो करो, कैद शायद कहने से पहुंच जाए। तो बादल तो आते हैं दीदी पर बरसते नहीं है, हवा चलती है तो
1: गरज रहे पर बरस नहीं रहे।
0: गरज भी नहीं रहा है, बरस भी नहीं रहा है फिलहाल में तो।
1: जी कौन सा गाना?
0: ये तो एक गीत सुनवा दीजिए, फिल्म का नाम है मजबूर।
1: हाँ जी,
0: बाहर बरसता तो हाँ बाहर रिमझिम बरसता बाहर ये पानी,
1: रिमझिम बरसता बाहर ये
0: पानी।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद दीदी, नमस्कार।
1: नमस्ते सर।

0: हेलो
1: नमस्ते दीदी।
0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: लतीफ अहमद रेना, कश्मीर से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: नगीना फिल्म का, मोहम्मद अजीज की आवाज में।
0: नगीना मूवी का?
1: हाँ।
0: ओके सर, सुना रही हूँ आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: थैंक यू मैडम।
0: यू वेलकम।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89

0: जी सर।
1: सर नमस्ते।
0: हाँ दीदी नमस्ते।
1: सर नमस्ते है आपका।
0: गंगाधर सावंकर कुंडलवाड़ी जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ओ बोले तू रूठा मैं रूठूंगी, यार ना फिल्म का।
1: हाँ सर, ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: ठीक है, धन्यवाद।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक
2: 89.6
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी
3: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
4: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर

0: 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS89.6।
2: हेलो।
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: योगेश जांगड़े, बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: फिल्म है नमक हलाल, गीत के बोल है आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो।
3: ओके, तो सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: धन्यवाद।
3: वेलकम। हेलो।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ DS इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डॉक क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक JEE एंड NEET। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
1: रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो
5: हेलो
3: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
5: अभिषेक राजपूत।
3: कहाँ से बात कर रहे हैं?
5: गंगापुर सिटी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
5: स्कॉर्पियो।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मैं अनुज बोल रहा हूँ।
1: कहाँ से बात कर रही हूँ?
0: अलीगढ़ से बात कर रहा हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: वो मासूम शर्मा चला दो, एक कटोरा जल्दी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी शर्मा।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
0: रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका

0: साथ है।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीणा के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो डीएस 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radio_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए हम तैयार हैं।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

0: 89.6।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरतल रेडियो डीएस।
3: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट।
4: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
5: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
4: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पिल्लूखेड़ा से।
5: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: रिमझिम बरसे बादरवा, मस्त हवाएं आई।
5: ओके सर, सुना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 11:06 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त हर्षे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधेपुर से। सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है मोनिका मीणा जी ने। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो DS पर।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम पायल जा रहा है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: लंबा राखे बाल छाते तक राखे दादी रे।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिए मैम।
2: वो गाड़ी पर चढ़ी

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: राहुल।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आरी आरी आरी तेरी मेरी पिंगड़ी।
0: ओके सर।

0: हेलो अरिता,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: तुम
1: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन
0: तो सीखो तेरे
1: सा गाना सुनना चाहोगी? तेरे
0: नाल चलो।
1: नाल?
0: हाँ
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: सर नमस्ते।
3: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
2: शहजाद खान पुराने में जाऊँ।
3: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: आज मौसम बड़ा सुहाना।
3: सर कौन सा? सर
2: आज मौसम बड़ा सुहाना।
3: ओके सर सुना।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी जनहित में जारी रेडियो दोस्त इशी मीना की तरफ से डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी साइबर ठगी से बचें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आजकल साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ओटीपी पूछना, फर्जी बैंक कॉल, केवाईसी अपडेट के नाम पर लिंक भेजना, क्यूआर कोड स्कैन करवाना, लॉटरी और इनाम का लालच देना, फेक जॉब और ऑनलाइन निवेश के झांसे से सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप पर फर्जी रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना, ये सभी साइबर ठगी के तरीके हैं। याद रखें, अपना ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को न बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 930 पर शिकायत करें। जागरूक बने, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त इशी मीना एवं डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।
3: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावत और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, एफसीआई गोडाउन रोड, गंगा।

0: मैम मेरा नाम है अंकुश, मैं बोल रहा हूँ नस्या कॉलोनी से।
1: हाँ जी हेलो।
0: तो ये गाना सुनना है मेरे को, पल देसी गाना। नहीं
1: ओके सर।

0: हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
1: मैम मेरा नाम है ये सलमानी।
0: कहाँ से बात कर रहे सर?
1: मुझे रंगापुर सिटी से मैम।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आज गाना सुनना चाहते हैं पहली पहली मोहब्बत की है।
0: पहली पहली
1: क्या मैम?
0: पहली पहली बार मोहब्बत की है।
1: यस मैम।
0: सुना रहे आपकी फरमाइश करेगा।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कोमल।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिंह जी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: झलक दिखला गया।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।
2: हेलो।
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: रोहित।
3: कहाँ से बात कर रहे?
2: आदर्श नगर।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: मस्त नजरों से अल्लाह का।
3: कौन सा सर?
2: मस्त नजरों से अल्लाह बताए।
3: वो किसा सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर? ये गाना

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम से बात कर?
1: निकिता।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: रेलवे स्टेशन।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: किनारा सॉन्ग।
0: किनारा सॉन्ग? ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: मैम मेरा अमित कुमार।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, ये वाला गाना।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीना के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो डीएस 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radio_GG सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए, हम तैयार हैं।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

तो वक्त हो चुका है 12 बज गए हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों, कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है नेट कॉलिंग द्वारा। एक पत्र आया है, श्वेता का नाम है। महेश खान पहलगांव कश्मीर से सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो।
1: हाँ सर, नाम क्या है आपका?
0: रफी खान।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: लोगों मजे के पीछे से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: खुला है मेरा पिंजरा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करेंगे।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: हेमंत।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: हम भरतपुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ब्लॉक
1: ओके। फरमाइश करिएगा।

0: हेलो। हाँ जी मैम, क्या है आपका?
1: रोहित शर्मा।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो?
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: कच्ची गली तेरा मातम।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी सर।

0: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: नाम गौरव है, राजौरिया।
0: कहाँ से बात कर रहे सर?
1: ओकर सितम।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मेरे महबूब का या मतलब।
0: ओके सर।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है?
1: देवेंद्र जी। सर
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मसिया कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: कॉलेज वाली छोरी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा।

0: जय इस छोरे गल ना सेटिंग हो जा।
1: जी साजा, छोरा तो घना एंडी है।
2: न्यू बता, सेटिंग कितनी क्लियर है?
3: सेटिंग का तो बेराना, पर यार इतने हैं, तेरा कक्कता वालिया ने भी ब्याले जाएंगे।

दोस्तों वक्त हो चुका है 12:23 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों आप कार्यक्रम सुन रहे हो हेलो फरमाइश। दोस्तों मिलते हैं थोड़ी ही देर में 1 बजे नए तरानो कार्यक्रम के साथ। सुनते रहिए फिल्म संगीत सॉन्ग।

0: है दोस्तों, इश्क का दस्तूर ही कुछ ऐसी, जो इसको जान लेता है ये साला उसी की जान लेता
1: है। यो यो, हनी सिंह।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीणा के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो डीएस 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए, हम तैयार हैं।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

गुड आफ्टरनून दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है, एक बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों भी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहीं तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।
2: दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में आए हैं मेहमान के रूप में डॉक्टर साहब, तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी।
3: जी, वेरी गुड आफ्टरनून।
2: डॉक्टर साहब, आज हमारे स्टूडियो में आप मेहमान के रूप में पधारे हैं। सबसे पहले तो हमारे सभी सुनने वालों को आप अपना परिचय बताएं।
3: जी, मेरा नाम डॉक्टर सुष्मिता सेन है और मैं लखनऊ से हूँ और मैंने हिंद मेडिकल कॉलेज से अपना MBBS कम्प्लीट किया है और करंटली आई एम प्रिपेरिंग फॉर एम्स। अभी मैं एम्स में PG की तैयारी की सोच रही हूँ, अभी मैंने डिसाइड किया नहीं है। मैं हर एक जर्नल फिजिशियन के रूप में अभी कार्यरत।
2: बहुत अच्छा, और आप इतनी कामयाब हो रही हैं। और आज महिलाओं में अक्सर देखा जाता है बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मैं आज विशेष तौर से महिलाओं के जो भी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में आपसे शेयर करूंगा, उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आज आम जो महिलाओं में समस्याएं दिखाई देती है वो ज्यादातर क्या दिखाई देती है?
3: जी, आजकल बहुत जो कॉमन है वो है PCOD, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं। ये में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे रेगुलर पीरियड्स हो गए, महीना सही नहीं आता है, बच्चियों का 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन बीमारी है, इसके लिए हम एक जांच करवाते हैं जैसे बोलते हैं हम अल्ट्रासाउंड।
2: जी,
3: अगर अल्ट्रासाउंड में क्लियर हमें नहीं हो रहा है तो फिर हम MRI करवाते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। और इसके लक्षण जानना बहुत जरूरी है, तो क्या आप इसके लक्षणों को जानना पसंद करेंगे?
2: जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बताएं आप कि ये किस उम्र की बालिकाओं में ज्यादातर पनपना शुरू हो जाता है?
3: ये खासकर 14 से लेकर के 15 साल में ये शुरू हो जाता है और ये मोटापे से संबंधित बहुत ज्यादा है। जिनके घर में मोटापा है उन बच्चियों के घर में बहुत ज्यादा कॉमन है ये PCOD। ये खासकर मोटापे से रिलेटेड बीमारी है, और जो चलना फिरना बिल्कुल भी नहीं है जिनके घर में, उनके घर में ये बीमारी बहुत ज्यादा है।
2: सुष्मिता जी, इसको पहचानने में कब इंसान मतलब गणना करने लग जाता है कि यह बीमारी हमारे में शुरुआत दस्तक दे चुकी है?
3: जी, जब ये बीमारी जब शुरू होती है तो महीना लगभग लड़कियों का 13 से 14 साल की उम्र के बीच में ये महीने की शुरुआत हो जाती है। तो अगर महीना बिल्कुल हर महीना सही आना चाहिए, अगर महीना सही नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत की बात है। और 90% केसेस में देखा जाता है कि लड़कियों को PCOD होता है, और इसमें चेहरे पे बाल आना, दाढ़ी, ये सब लक्षण होते हैं जो बिना जांच के ही पता चल जाते हैं। गर्दन थोड़ी सी काली होने लगती है, तो ये सारे लक्षण हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि चेहरे पे बहुत ज्यादा मुहासे होने लगते हैं, मोटापा, पूरे बॉडी में फैट बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लगता है, तो इससे पूरा पता चल, बाल झड़ने लगते हैं। तो ये बाहरी संकेत से ही हमें पता चल जाएगा कि ये दिक्कत है।
2: अच्छा, गांव में आज भी अक्सर जो छोटी बच्चियां हैं वो बात करने से डरती है, अपने गार्जियन को, अपने माता पिता को बताने से डरती है, तो आपकी क्या राय है इस संबंध में?
3: जी, मेरे ख्याल से ये लोगों को जागरूक हमें करना चाहिए। जितना लोग जागरूक होंगे उतना ही लोगों में ये जो थोड़ा सा शर्म जो भी है छुपाना, ये धीरे धीरे अब कम हो रहा है। जितना हम चीजों को बात करेंगे इस पे उतना लोग थोड़ा खुल के, अब तो बहुत सोशल मीडिया के थ्रू हम इन सब चीजों को धीरे धीरे हटा सकते हैं।
2: अच्छा, बात करें इसके बचाव की, तो हम शुरुआती दूर से अगर इस पे बचाव पर अगर कार्य करना चाहें जो भी महिला या बच्चियां हैं, तो मतलब कौन कौन सा खान पान रहना चाहिए उनका, क्या क्या दिनचर्या रहनी चाहिए?
3: जी, दिनचर्या में कम से कम उनको एक से डेढ़ घंटे उनको चलना चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए। साइकिलिंग जितना मूवमेंट होगा, जितना, ऐसा नहीं है कि दौड़ना है, लेकिन चलना फिरना 2 घंटे तो मिनिमम होने चाहिए। और घास पे चलना, नंगे पैर, ये सब भी बहुत ही लाभ माने जाते हैं, बेनिफिट होता है इनका, और दवाइयों से भी काफी लाभ मिलता है। और वेट लॉस, सबसे पहले अगर वजन ज्यादा है तो वजन को 20-30% उनको कम करना है, और हरी सब्जियां खाना है, रोटी चावल दाल ये सब उसको कम करके हरी सब्जियों को ज्यादा वरीयता देना है।
2: सुष्मिता जी, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं या बालिकाएं अपने स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं दे पाती जितना पहले के समय में देते थे, तो क्या आप मानते हैं कि आज अपने आप के लिए भी समय निकालना जरूरी है, और जो पौष्टिक आहार है उन्हें लेना कितना उचित रहता है?
3: जी, बहुत ही जरूरी है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप महंगे महंगे फल लीजिए, 400-500 रुपए खर्चा करिए, आप सीजनल लीजिए, 2-10 रुपए के, जो अभी तो सीजनल आ रहे, खीर आ रहा है 10 रुपए में ही आ जाता है, चुकंदर आ रहा है, ये सब 20-30 रुपए के बजट है, अपने स्वास्थ्य पे लगाइए और सस्ती चीजें सीजनल फल खाइए तो बहुत अच्छा रहेगा।
2: अच्छा, खाने में रोजमर्रा की जिंदगी में महिलाओं को क्या शामिल करना जरूरी होता है?
3: मेरे हिसाब से अगर ये खासकर की अगर गर्भाशय की बात है तो उनको खासकर दालचीनी का सेवन हो गया, बहुत ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज नहीं खानी है, अदरक हो गया, ये सब इनको अपने खान पान में जरूर ऐड करना है, चुकंदर तो ऐड ही ऐड करना, उसमें आयरन होता है, फोलिक एसिड होता है, और दवाइयों से तो काम होता ही है लेकिन खान पान जितना अच्छा रहेगा उतना बेस्ट है। और एक घंटा अगर नहीं समय देंगी टहलने और काम में तो फिर वो बीमारी और भी बढ़ती जाएगी। कुल मिलाकर के साइकिल, एक्सरसाइज, जॉगिंग जितना हो सके ये सब सबसे बेस्ट है। योगा, सूर्य नमस्कार अगर है तो सूर्य नमस्कार तो वन ऑफ द बेस्ट है मेरे हिसाब से।
2: बिल्कुल सुष्मिता जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई। मुझे आखिरी और अंतिम जो प्रश्न है मेरे मन में उभर रहा है वो ये है कि अगर पीसीओडी से ग्रसित महिला या बालिकाएं हैं तो उनको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी दवाइयों का डॉक्टर से सलाह उपचार करना चाहिए?
3: बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये सबको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी बीमारी है तो उसकी क्या जांच होनी चाहिए, क्या दवाइयाँ होती हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है। तो हम सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एब्डोमेन, होल एब्डोमेन का करवाते हैं, तो उसमें हमें दिख जाता है कि अंडाशय का कितना साइज है, कितना बड़ा है, क्या दवाइयों से कंट्रोल हो सकता है या नहीं। तो ये सबसे पहली जांच होती है जो हर महिला को पता होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन। उसके बाद फिर हम FSH करवाते हैं, LH करवाते हैं, प्रोलैक्टिन करवाते हैं, ये सब खून में ही, ये एक बार हम खून का सैंपल ले लेते हैं और उसी से ही ये सारी जांचें हमारी हो जाती हैं। उसके बाद अगर जांच में कुछ निकला तो सबसे कॉमन है मान लीजिए कुछ नहीं भी निकला तो भी एक OCP हम देते हैं जो 21 दिन खानी होती है महिलाओं को
2: जी।
3: हर महीने 21 दिन खानी होती है वो OCP, और साथ में हम मेटफॉर्मिन भी देते हैं जो कि शुगर की दवा है, डायबिटीज की दवा है, लेकिन हम इसमें भी देते हैं मेटफॉर्मिन नाम की दवा आती है। तो इससे जो उनके अंडाशय का जो स्वास्थ्य है वो और अच्छा हो जाता है और धीरे धीरे ये बीमारी खत्म हो जाती है। और कभी भी उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा मुहासे हो और बाल आए तो तुरंत उनको संपर्क करना चाहिए ऑब्स्ट्रिशन और गायनेकोलॉजिस्ट से, ताकि जल्द से जल्द उसका इलाज किया जा सके। और अगर दवाइयों से भी ना काम चले तो हम दूरबीन से सर्जरी करते हैं जिसे हम बोलते हैं ओवेरियन ड्रिलिंग। हम उनके अंडाशय में छोटे छोटे एक तरीके से हम उसको चुभाने की एक ड्रिलिंग करते हैं, ओवेरियन ड्रिलिंग। तो उससे क्या होगा, उनके अंडाशय में जो अंडे बन रहे हैं वो और तेजी से बनने लगते हैं। तो हम दूरबीन के जरिए उनके जो अंडाशय है उनके अंडाशय में हम थोड़े थोड़े बहुत निशान लगा देते हैं 10-15, तो जिससे अंडे बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है।
2: बिल्कुल सुष्मिता जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और मैं चाहूंगा कि रेडियो के माध्यम से आप आम जन को क्या संदेश देना चाहेगी महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए?
3: मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि अपने स्वास्थ्य और अपने खान पान को सबसे उत्तम रखना है और कोई भी तली भुनी चीजें नहीं खानी है, और टहलना है, योगा करना है, अपनी अपने शरीर को कम से कम 2-3 घंटे देने हैं, और बाहर की चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं खानी है, और वरना बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। हमें छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है ताकि वो आगे जाके खतरा ना बने।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत सटीक जानकारी विषय पर आपने हमारी सभी महिलाओं, माता बहनों को बताया। इस कार्यक्रम में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।
3: जी, थैंक यू सो मच।

0: यारा
1: 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है, 2 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहीं तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी यादें 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे, सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी जनहित में जारी रेडियो दोस्त इशी मीना की तरफ से DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी साइबर ठगी से बचें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आजकल साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। OTP पूछना, फर्जी बैंक कॉल, KYC अपडेट के नाम पर लिंक भेजना, QR कोड स्कैन करवाना, लॉटरी और इनाम का लालच देना, फेक जॉब और ऑनलाइन निवेश के झांसे, सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप पर फर्जी रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना, ये सभी साइबर ठगी के तरीके हैं। याद रखें, अपना OTP, ATM पिन, बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को ना बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 930 पर शिकायत करें। जागरूक बने, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त इशी मीना एवं DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
3: तो वक्त हो चुका है 3:00। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त RJ पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्य ग्रम भूली बिसरी यादे, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्य ग्रम बैक टू वे गाने का 89.6 रेडियो DS पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल पर 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वर 89.6 पे रेडियो DS।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ
2: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
4: गंगापुर सिटी की धरती।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीना के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो डीएस 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज?
1: गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक।

दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का, थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम आपका मनपसंद राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

दोस्तों 4:01 का समय हो चुका है। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो डीएस 89.6 दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपके रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: हेलो
2: हेलो
1: सर, नमस्ते।
2: नमस्कार
1: सर, नाम क्या है आपका?
2: नाम बाबू खान है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: कितना प्यारा है चेहरा।

0: नमस्ते
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम चौधरी, अर्ज कर रहा हूँ मावजी से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना तो बहुत बढ़िया गाना लाए हैं आपके चैनल के लिए।
1: हाँ जी बताइए।
0: दुनिया एक नंबर ही।
1: दुनिया एक नंबर ही,
0: तो मैं 10 नंबर ही।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये गाना रेडियस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू वेलकम।

0: तुम्हारा? ये लो नोटा। अरे इस घर में बहुत कुछ है, बादाम, पिस्ता, काजू, गर्मा गर्म समोसे।
1: मैं इस घर का नमक नहीं खाऊंगा।
0: अरे नमक नहीं खाओगे तो मत खा।

0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति राधा की मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: महेंद्र कपूर साहब की आवाज, मौसम है बहारों का, फूलों का खिलना है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद, नमस्कार,
0: वेलकम।

0: जी नाम क्या है आपका?
1: गुलशन।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: मैं राजा तू बन गया मेरी रानी।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हेलो।
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: ईशान तुपचर।
2: कहाँ से बात कर रहे?
1: रत्नापुर सिटी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मेहंदी लगने से पहले।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: ममता बुजुर्ग।
0: कहाँ से बात कर रहे सर?
1: गंगापुर स्ट्रीट।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: हौले।
0: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो। हाँ
1: हेलो। हाँ
0: जी, नाम क्या है आपका? कहाँ
1: जी,
0: से बात कर रहे हो? कौन
1: गंगावरी
0: सा गाना सुनना चाहोगे?
1: तैयार।
0: वो किसे सुना रहे हैं?

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: प्रज्ञा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: तू माने मेरी जान, तुझे जाने नहीं दूंगा।
1: ओके सर, हमारे आपकी फरमाइश करिएगा ना।
2: तुम बस मूव ऑन कर जाओ।

0: क्यों कर रहा है ये सब?
1: क्यों और मुश्किल कर रहा है मेरे लिए? तू जा बस।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: मैम, मेरा नाम प्रीति है।
3: कहाँ से बात कर रही हूँ?
2: गंगापुर सिटी से।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
2: लंबा रखे बाढ़ छाती तक रखे डड्डी है।
3: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस
0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
4: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
5: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
5: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो मैडम, लक्ष्मण पिक्चर का गाना सुनना मैडम।
1: नाम क्या है आपका?
0: मनोज सक्सेना।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? नसिया कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मैडम वो है, तुम्हें देखे इतना किया दिया

0: हेलो हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: जुनैद खान।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: जिंदापुर से।
0: कौन से गाना सुनना चाहोगे?
1: जिंदा जो पठान मेरी जान।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
0: रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: देखो वैसे तो सर्दियों में ना किसी का एक्सरसाइज करने का मन करता नहीं है, लेकिन अगर सर्दियों में आपने एक प्राणायाम कर लिया ना तो आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी। मैं हूँ आरजे खुशी और आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने का एक आसान तरीका आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जिन लोगों को सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, जिनके पैर के नीचे के जो तलवे हैं वो एकदम ठंडे हो जाते हैं, और जिनको साइनस रहता है या नाक बंद हो जाती है, कफ बहुत ज्यादा रहता है, उन्हें सर्दियों में एक प्राणायाम करना चाहिए जिसका नाम है सूर्य भेदी। इसमें क्या होता है कि आपको अपनी बाई नाक को बंद करना है और दाई नाक से सांस लेनी है, बाई से छोड़नी है, बस आपको इतना ही करना है। है ना आसान? लेकिन आपको पता है ये इतनी इफेक्टिव होती है, आपकी पूरी बॉडी को गर्म कर देती है, और अगर डायबिटीज ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ना उसको भी ठीक कर देती है। अपना कर देखें और डिफरेंस खुद फील करें। आती हूँ थोड़ी देर में, मैं हूँ आरजे खुशी।
1: गंगापुर सिटी की धरती, रेडियो डीएस।

कभी कभी ना सुबह की शुरुआत होती बड़ी चिड़चिड़ वाली है, लेकिन अगर हमने अपनी प्रतिक्रिया उसके प्रति बदल दी ना तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं हूँ आरजे खुशी। सोच कर देखिए कि अगर आप किसी चीज पे अपनी प्रतिक्रिया ही ना दें तो वो आपको इतना परेशान कर ही नहीं सकती। और सुबह को बेहतर बनाना है तो सुबह की चिकचिक जो होती है ना उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए। और अगर घर का हर सदस्य इस चिकचिक से बचने की कोशिश करे और अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश करे तो पूरा घर एकदम आराम से शांति से हैप्पीली रह पाएगा, है कि नहीं? तो हम कोशिश कर सकते हैं कि जब भी हमें गुस्सा आए या जब भी हमें चिड़चिड़ होने की कोशिश करे, स्पेशली एकदम सुबह सुबह, तो हम कोशिश करें कि वहां हम अपनी कोई प्रतिक्रिया ना दें। और आप देखेंगे कि वो बात एकदम छूमंतर हो जाएगी, मतलब कि उस बात का कोई असर आप पर पड़ेगा ही नहीं। अब मुलाकात होगी कल। अभी के लिए यहाँ से निकलती हूँ, मैं हूँ आरजे खुशी। 89.6 पे रेडियो DS।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: आपने कभी गौर किया है हमारे बड़े बूढ़े कितने खुश रहा करते थे और हम हर छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं। मैं हूँ आरजे खुशी। आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि उनके जीवन में कुछ ऐसी चीजें थी जो वो डेली करते थे, जैसे कि कथाएं सुनना, और उन कथाओं से वो बहुत कुछ सीखते थे। पहले तो ये भी होता था कि परिवार के सभी सदस्य दिन में आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा बैठ जाया करते थे और प्रभु के ऊपर बातें किया करते थे। आज के जमाने में ये सब बोरिंग माना जाता है, लेकिन एक बात बताओ, अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया ना तो एक तो आप सीखेंगे भी बहुत कुछ और दूसरा एक दूसरे को वक्त देना शुरू करेंगे, जो कि आज हम लोगों के लिए दे पाना बहुत मुश्किल है। थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है शुरुआत में, लेकिन अगर आपने इसको करना शुरू कर दिया तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो आज सुबह की शुरुआत इसी सोच से कि हम अपनों को अपने करीब लाने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ आरजी खुशी, लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: परीक्षा का समय आ गया है और इस वक्त पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता। मैं हूँ आरजे खुशी। जब मैं स्कूल में थी ना, तो इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा नींद आया करती थी, और मैं समझ सकती हूँ उन सभी स्टूडेंट्स की बात जो कहते हैं कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा नींद आती है, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता है। देखो, ये बात तो ठीक है कि सर्दियों में इस टाइम पे बहुत नींद आती है, बहुत आलस आता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिस तरीके से हम खुद को संभाल पाए। तो सबसे पहली चीज ये कि कोशिश करें कि सूरज में जरूर बैठें। कई बार ये विटामिन डी की कमी से भी हो जाता है, तो अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे, डेली सूरज के नीचे बैठेंगे, तो आधी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आपको आलस बहुत ज्यादा आता है, तो दो चीजें हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए। एक तो दिन के वक्त आपको नहीं सोना है, और दूसरी चीज, अगर आप ज्यादा खाना खा रहे हैं तो भी ये परेशानी आपको हो सकती है। और एक इससे भी जरूरी चीज, हम लोग सर्दियों में पानी पीना भूल जाते हैं। अगर आपने इतनी चीजें कर ली ना, तो आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा सर्दियों में। मैं हूँ आरजे खुशी, लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सर्दियां पसंद तो सबको होती है क्योंकि अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, लेकिन इन्हीं सर्दियों से लोग परेशान होते हैं डैंड्रफ की वजह से। मैं हूं आरजी खुशी। अगर आप भी परेशान हो चुके हैं ना डैंड्रफ से, तो कुछ चीजें जो आप अपना सकते हैं। देखिए, आंवला, जिसके बारे में मैं बार बार बात करती हूँ, वो इसलिए ताकि आप आंवले को अपना लें अपने जीवन में। आंवले का जो तेल है वो पूरी तरीके से डैंड्रफ हटाने में मदद करता है। एक और चीज, हम लोग सर्दियों में क्या नहाना थोड़ा सा कम कर देते हैं, और सर्द होके नहाना तो बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। लेकिन अगर आपने वॉश बार बार नहीं किया ना सर को, तो डैंड्रफ जमा रह जाएगा। इसलिए कहा जाता है एक दिन छोड़ के एक दिन आपको सर धोना ही चाहिए सर्दियों में। एक और बात, हम लोग नहाने के लिए सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गर्म पानी हम जैसे ही अपने सर में डालते हैं ना, तो ये डैंड्रफ को बढ़ावा देता है। इसलिए सर में अगर आपको पानी डालना है तो गुनगुना पानी लें, एकदम गर्म पानी कभी भी सर में ना डालें। इन टिप्स को फॉलो करें और सर्दियों को खुल के एंजॉय करें। मिलूंगी कल इसी पते पर, इसी समय पर। मैं हूँ आरजे खुशी।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ। सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआई एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ। सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: DS कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, IAS या RAS, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। तेरा रे राम,
1: तेरा रे राम। नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। तेरा रे राम,
1: तेरा रे राम। नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSIS।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: जो

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। तेरा रे राम,
1: तेरा रे राम। नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। तेरा रे राम, तेरा
1: रे राम। नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। तेरा रे रंग, तेरा
1: रे रंग। नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। तेरा रे राम,
1: तेरा रे राम। नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। तेरा रे राम,
1: तेरा रे राम। नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। तेरा रे राम,
1: तेरा रे राम। नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआईएस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। तेरा रे राम,
1: तेरा रे राम। नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। तेरा रे राम,
1: तेरा रे राम। नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस